कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके हाथ कोई कीमती चीज थमा दी हो या बहुत जरूरी काम आपको सौंप दिया हो और कहा तुम संभाल लेना? अजीब सा गर्व होता है ना, और साथ में थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीते हफ्ते हम भारतीय स्पोर्ट्स फैंस पर ऐसी ही एक जिम्मेदारी आ गई थी। जानते हैं ना कि नई दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिनों पूरे बैडमिंटन जगत के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि 19 साल बाद भारत को मौका मिला था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन करने का। मानो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बैडमिंटन का त्योहार था। हर शॉट में रोमांच था। हर रैली में धड़कन थी। हर पॉइंट के साथ जुनून सातवें आसमान पर चढ़ता दिखता। किसी जश्न को यादगार बनाने के लिए सिर्फ मैदान सजाना काफी नहीं होता, कोर्ट पर खिलाड़ी चाहिए हैं, उनके साथ खड़े फिजियो और

0: सपोर्ट स्टाफ चाहिए हैं, पर्दे के पीछे आयोजन की बारीकियों को संभालते लोग चाहिए हैं, दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए मेहमान नवाज चाहिए हैं, और सबसे बढ़कर स्टैंड में उमड़ते वो दर्शक जिनकी तालियों से खेल में जान पड़ती है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप नहीं रहने दिया, इसे बैडमिंटन का उत्सव बना दिया। शायद इसलिए तो टूर्नामेंट के खत्म होने पर BWF की प्रेसिडेंट खुनिंग लिस्वाड्रा टूल ने कहा,
1: What a week New Delhi has given us. India waited 17 years for this moment and India made every year count. The BWF World Championships 2026 have won praise from every corner of our sport. That praise belongs to people.
0: Badminton Association of India के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि ये टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, साई की और BI की टीम की ये मेहनत था और इस काम को ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
0: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नरोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
3: I think it's definitely huge for France, definitely huge. Felt all the support about the fans. We also got all the support from all the staff behind. And I think definitely today was a day for French badminton and it was a day for the whole staff also. I mean, I didn't feel that I won for me today. Today it was for France.
0: Women singles में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे सेटों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
4: There are a lot of people supporting me. I want to thank all of my fans supporting me. This keeps me going and just giving me energy. So I'm so excited and very enjoy. I think it's support me. Yeah, cheering on me. This is my motivation. And I, there are a lot of people, my team coach, head coach, my family, all fans, trainer, all supporting me. This is my keep going.
0: Men's doubles में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने 2 साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
5: And now, our men's doubles world champion 2026 from China, Liang Weiqing and Wong Cheng.
0: वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर 1 जोड़ी को फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात दी, और इस जीत के बाद भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई को भी अपने इस जोश भरे प्रदर्शन का एक कारण बताया।
6: ने 대단한 열기를 보여주셔가지고 정말 감사하게 생각하고 선수로서는 정말 뛸 맛이 났던 것 같습니다.
7: She's saying that we are highly, you know, happy that

0: after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd, that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor for them.
1: Mixed doubles mein bhi itihas racha gaya. Tom Gicquel aur Daphne Del Rue ki jodi ne final mein ek bada ulat phir karte hue Cheen se aane wali Feng aur Huang ki jodi ko maat di aur ban gaye vishwa vijeta.
2: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
1: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने दो गोल्ड मेडल जीते. उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया.
3: I'm very, very happy, of course, and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
1: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर. शुरुआत ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से, जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी. विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया. इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ. 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले अब सिर्फ दो देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत. इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती हैं,
4: Being into that club, I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just need to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjun Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
1: इसी श्रेणी में अपना पहला World Championships खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी भी थी, जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यूं कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया. राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से, जिनके विरुद्ध उनको हार मिली.
5: इट वॉज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो, लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एट लीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी केम ऑन कोर्ट वी वर नर्वस, बट देन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग वी केम इनटू द मोमेंटम, वी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड वी वर देयर.
1: मेन सिंगल्स में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर वन शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए.
6: प्लेइंग वर्ल्ड नंबर वन इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज वेल. आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड देयर वर नो बी मोमेंट्स एज आई सेड, बट या हैप्पी टू पुल इट ऑफ.
1: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली.
6: डेफिनेटली अ लॉट टू लर्न, especially this match, a tough one to digest as well, but we'll go back, analyze and I think a lot of positives as well from this tournament, but I think definitely a lot to learn and a long way to go.
1: Dusri taraf Lakshya Sen round of 32 mein USA ke Garrett Tan se hare, jiski umeed shayad kisi ne nahi ki thi. Women singles mein jahan teenage sensation Unnati Hooda ka safar round of 32 mein khatam hua, to wahin PV Sindhu ne mano ghadi ki suiyan पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चीन की वांग जी यी की कड़ी चुनौती थी, जिसको सिंधु पार ना पा सकी.
7: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. Thoda aur patient rehna tha mere side se. Bahut acha chal raha tha. Game 1, game 2 aur game 3 bhi bahut equal chal raha tha. The last 3 points just changed the game is what I felt. I should have been a little patient.
1: Men's doubles mein MR Arjun aur Hariharan Amsa Kharunan ki jodi round of 32 ke aage nahi badh saki, lekin chot ke baad wapsi kar गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे. वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग

0: और वांग ने उन्हें मात दी।
1: We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहां पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि they were playing quite a solid game, a lot of the points. हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश हुई और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज।
0: मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े एवं आसित सूर्या और अमृता प्रमुथेश के साथ भारत की तीन जोड़ी

0: संगीत देखने को मिले। और बताते हैं पुलेला गोपीचंद।
1: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं। विमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं और मेन सिंगल्स में भी आयुष का पहला दिन बहुत ही अच्छा था और द थर्ड डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट बट ओवरऑल डिसेंट इन दैट सेंस। आई वुडन्ट बी टू वरीड अबाउट इट। सम डेज दीस थिंग्स डू हैपन बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई एम होपिंग दैट और द एशियन गेम्स आई एम होपिंग फॉर बेटर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके लिए ये सफर सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, ये अपनी जड़ों तक लौटने का एक खूबसूरत बहाना था। दुनिया के अलग अलग कोनों में पले खिलाड़ी इस बार सिर्फ भारत खेलने नहीं आए थे, शायद अपनी मिट्टी को थोड़ा और करीब से महसूस करने आए थे। जैसे यूएई का प्रतिनिधित्व करने वाली खान बहनें माइशा और ताबिया।
2: तो मेरी मम्मी मुंबई से, पापा मध्य प्रदेश से, तो वो लोग जॉब के लिए यूएई में आए थे। तो हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप यूएई में है, स्कूलिंग सब उधर ही करा है, लेकिन अभी थोड़े साल पहले यूएई को रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। इससे पहले स्टेट नेशनल सब इंडिया में एमपी की तरफ से खेलते थे।
0: उसी देश के झंडे के नीचे वुमेन सिंगल्स में खेल रही थी प्राकृति भारत।
3: I'm from Tamil Nadu, but I was settled in the Gulf. I live in Dubai right now, and I've joined the national team over there, and I've been playing for a year and a half now, representing UAE.
0: अलवर में जन्मी इशिका जायसवाल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई भी किया।
4: So I'm from Alwar, Rajasthan, and I was born here, so I'm still an Indian passport. Yeah, I frequently come here, all my family's here. There's a lot of Indians in our academy, and but now you'll be seeing a lot more Indian.
0: मेडल आए, कुछ उम्मीदें टूटी और कुछ नई उम्मीदें जन्मी, लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ये रही कि बैडमिंटन ने एक बार फिर सबको एक साथ ला खड़ा किया। भारत अभी इस खेल की महाशक्ति नहीं, मगर मंजिल की ओर बढ़ते कदम साफ दिखाई दे रहे हैं और जब कदम बढ़ते रहें तो सपने भी बड़े होते रहते हैं। इन सपनों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से आभार। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 के हर दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मैं दर्पण टिकिया।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:11 है चुड़ी की घड़ी का समय 107 एफएम रेनबो पर। शर्मिशा करती है आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.5 जी हाँ 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और चैनल को ट्यून करने के बाद जैसे ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है और ठीक उसी समय एक धमाकेदार गाना, जी हाँ एक ऐसा गाना 90s के समय का गाना और फिर एक बार तरोताजा कर देने वाला गाना। और भाई सुबह का समय है और ऐसे में आपका मूड जो है वो बिगड़ा रहे ये तो खैर हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, और इसीलिए आपके मूड को बनाए रखने के लिए बातें होती हैं अलग अलग तरह की इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला भी चलता रहता है इसी कार्यक्रम में। और शर्मिष्ठा करती है आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में और जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ क्योंकि इस कार्यक्रम का साथ बना रहता है पूरे 11 बजे तक। और चलिए शर्मिशा के साथ आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और प्यारे से तराने के साथ शुरुआत हो चुकी है इस कार्यक्रम की और बातें करूंगी बहुत सारी अलग अलग विषयों को लेकर इसी कार्यक्रम में, तो जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कार्यक्रम के साथ। तो चलिए फिर एक बार रुख करते हैं एक बहुत ही प्यारे से तराने की ओर और उसके बाद बातें होंगी। सबसे पहले तो एक नई तकनीक को लेकर आप सभी के साथ एक रोचक जानकारी साझा करना चाहूँगी और बताऊँगी आपको कि वो जो नई तकनीक है ना आखिर उसे नाम क्या दिया गया है। और ये जो नई तकनीक के बारे में जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ये तकनीक आखिर किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे ही देती हूँ। एक ऐसी चीज़ के साथ ये तकनीक जुड़ी हुई है जो कि रोज़मर्रा के जीवन में नई नई इमारतें या फिर बिल्डिंग्स और अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के काम में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। और वही वाली चीज़ जब नई तकनीक के साथ बनकर आती है तो उसका जो रूप है वो बिल्कुल अलग सा रूप बन जाता है। तो आखिर ये जो नई तकनीक है ये क्या है और किस चीज़ के साथ ये नई तकनीक जुड़ी हुई है ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल पापुन की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना और सबसे पहले

हमारे आपके मिलन की बात हो रही थी और हमारा आपका जो मिलन है वो आज का तो है नहीं, है ना, क्योंकि ये कार्यक्रम के साथ आप सभी श्रोताओं का जो साथ है, जुड़ाव है, वो कई सालों पुराना है और इस पुराना रिश्ते में थोड़ी सी खटर पटर ना हो, थोड़ी सी नोकझोंक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। और रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा प्यार भरा बनाने के लिए आखिर थोड़ी बहुत नोकझोंक की तो ज़रूरत होती ही है। तो चलिए अगला गीत थोड़ा सा नोकझोंक भरा आप सभी श्रोताओं के लिए। फिलहाल पाफुन की आवाज़ में ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप।

अनु मलिक के संगीत से सजा ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गया था वरुण ग्रोवर द्वारा और सुई धागा फिल्म से लिया गया था। इस गीत को आवाज़ पापोन की थी और इस प्यारे से तराने के बाद चलिए रुख करते हैं उसी नई तकनीक के बारे में, मैं बताने जा रही हूँ जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। और एक ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है ये नया तकनीक जो कि रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल होता है, यानी कि जितने तरह के कंस्ट्रक्शन के काम हैं, जैसे इमारतें या फिर तरह तरह की कंस्ट्रक्शन कामों में लाया जाता है, उसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है ये नया तकनीक। और अगर मैं बताऊं कि ईंट, जी हाँ वही ईंटें जिससे घर बनाए जाते हैं, अगर वही ईंटें बैटरी में परिवर्तित हो जाए तो क्या आप इस बात को मानेंगे? अगर नहीं भी मानते, लेकिन जनाब ये बात बिल्कुल सच है और इंजीनियरों के दिमाग से, खुराफाती दिमाग से ये जो आइडिया है ये निकाला गया है और बिल्कुल फुल प्रूफ आइडिया ये प्रूफ हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि ये जो नई तकनीक है जिससे ईंटों को बैटरी में परिवर्तित किया जाता है, इस टेक्निक को आखिर नाम क्या दिया गया है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताऊं, ये जो नई टेक्निक है इसे नाम दिया गया सन इन अ बॉक्स तकनीक। जी हाँ, और सन इन अ बॉक्स तकनीक आखिर है क्या, क्या माजरा है ये? तो चलिए इसी माजरे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ईंट को घर या फिर इमारत बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। और लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ईंट का इस्तेमाल बैटरी की तरह भी हो सकता है जिससे बिजली मिल सकती है, और ऐसा हुआ है। जी हाँ, ये प्रूफ किया गया है। सुनने में भले ही ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन इंजीनियरों के तेज दिमाग से ये आइडिया निकाला गया है और अनेक की सोच को हकीकत में बदल दिया गया है। दरअसल ग्रेफाइट की ईंटों को एक शक्तिशाली थर्मल बैटरी में बदल दिया गया है और ईंटों को बैटरी बनाने वाले इस तकनीक में 2400 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है। इससे वे सुर्ख सफ़ेद होकर सूरज की तरह तेज रोशनी छोड़ने लगते हैं। इसके बाद पिघली हुई ये जो धातु है, धातु और खास सोलर सेल्स के दम पर उस तेज चमक को बिजली में बदल दिया जाता है। भाई ये तो कमाल ही हो रहा है कि जिस चीज़ से रोज़मर्रा के कामों में ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है, वही ईंटें अब बैटरी में परिवर्तित हो रही हैं। और ये जो कमाल का आइडिया है, ये खुराफाती दिमाग वाले इंसानों के दिमाग से ही निकला हुआ है, और इंसानी दिमाग भी कितना कमाल का है, है ना? कितने ही अलग अलग तरह के आइडियाज़ इस दिमाग के अंदर से निकलते हैं और कितने ही तरह की सोच इसके अंदर पनपती रहती है, और उसके बाद जब कुछ कमाल का बनकर तैयार होता है, उसके बाद हम और आप वाकई में बिल्कुल ताज्जुब से हो जाते हैं कि ये जो इंसानी दिमाग है ये वाकई में कितना खुराफाती है। आखिर इस छोटे से दिमाग में कितना कुछ चल रहा होता है जिसे बाहर से देखकर थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, है ना? तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सी बातें साझा करूँगी इसी कार्यक्रम में, क्योंकि भाई नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम का जब नाम है तो गीतों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ गपशप बिल्कुल जारी रहेगी इस कार्यक्रम में। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 10:30 हो चुके हैं और काफ़ी सारे गपशप फिलहाल हमने नई तकनीक को लेकर कर ली है, तो थोड़ा सा रुक किया जाए फिल्मी गीत की ओर, है ना? तो चलिए एक प्यारा सा तराना अरिजीत सिंह और चिन्मय की आवाज़ में आप सभी श्रोताओं के लिए जुड़े हुए हैं, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप के साथ। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:35 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में और 107 FM रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है। इसके अलावा न्यूज़ सुने ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। और चलिए नॉनस्टॉप गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त जिस खबर को मैं साझा करूँगी वो जुड़ा हुआ है हमारे देश के साथ। जी हाँ, और देश के साथ जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर हर देशवासी के लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। और चलिए ये खबर आखिर किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है इसके बारे में भी आपको बताऊं। और नौसेना को मिला है तीसरा और सबसे नया एंटी सबमरीन पोत जिसे नाम दिया गया है मंगरोल। और सबसे मज़ेदार बात ये है ना इस मंगरोल से जुड़ी हुई है कि 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने के लिए। तो चलिए ये खबर आखिर क्या है बताऊँ आपको। भारतीय नौसेना को पनडुब्बियों का पता लगाने और तटीय इलाकों की निगरानी के लिए एक नया युद्ध पोत मिल चुका है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटर क्राफ्ट जिसे नाम दिया गया है मंगरोल को नौसेना को सौंप दिया है। और मंगरोल इस श्रेणी का सीएसएल की ओर से बनाया गया तीसरा पोत है। और सबसे अच्छी बात इससे जुड़ी हुई ये है कि इसमें 80% से ज़्यादा सामग्री स्वदेशी है और इसे तटीय इलाकों में पनडुब्बियों की निगरानी और उनसे निपटने के लिए तैयार किया गया है। भाई ये तो जुड़ी हुई थी खबर हमारे देश के साथ और देश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हर देशवासी के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। और अगर बॉलीवुड की दुनिया की बात करें तो बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर क्षेत्र को लेकर जी हां हर विषय को लेकर फिल्में बनती रहती हैं। और ऐसे में सबमरीन को लेकर फिल्म ना बने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना ही हुआ है। और बल्कि ये कहा जा सकता है कि सबमरीन से जुड़ा हुआ भी फिल्म आपको बॉलीवुड की दुनिया में मिल जाएगा बल्कि बनाया जा चुका है। जी हाँ, सबमरीन से जुड़ा एक जाना माना फिल्म बनाया जा चुका था जो कि बहुत ही लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और फिलहाल एक प्यारा सा गीत आपको सुनाऊं उसके बाद बातें करेंगे एक और अच्छे से विषय को लेकर। जी हाँ, एक ऐसा अच्छा सा विषय जो कि हर इंसान के लिए बहुत ही खुशियों वाला पल होता है। और खुशियों वाला पल आखिर क्या है इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, लेकिन फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: भाई हम आपका दिल विल नहीं जलाते, हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। और हमारे हर कार्यक्रम का बस यही मसला है, यही मुद्दा है कि कैसे भाई हमारी ये जो जनता जनार्दन है, हमारी ये जो सबसे सबसे खास जो हमारे कार्यक्रम का जो हिस्सा है वो है हमारे श्रोता, उनको कैसे खुश रखा जाए, कैसे उनके चेहरे पर हंसी लाया जाए, कैसे उनको दिल को सुकून पहुंचाया जाए। और इसी कोशिश में रोजाना हम आते हैं आपसे मिलने, इसी तरह लेकर तरह तरह के कार्यक्रम FM रेनबो कोलकाता पर। और फिलहाल अभी आप सबके साथ हाजिर है चैनिका, लेकर आई है सिनेमा की बातें कार्यक्रम, आप सबका वही जाना पहचाना रोजाना वाला 3 का तड़का। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बता रही कि 3:07:33 हुए हैं, एकदम सही समय है ये अभी दिन का। और आज का ये जो दिन अभी तक फिलहाल रहा, धूप झाव की बात रही, कभी बरखा और कभी धूप का साथ रहा, लेकिन अभी फिलहाल मेरा साथ है आपके साथ, तो हम लोग बेहतरीन समय एक साथ बिताएंगे भाई, ये प्लानिंग मैं लेकर फिलहाल आई हूँ। और फिल्मों की खबरें हों तो फिर कैसे ना हमारा समय अच्छा बीते, क्योंकि ये वो माँ है जो बस हर दिन हर पल हर मुहूर्त हमारा जो है इसके नाम हमने करके रखा है। गाने जो हैं, फिल्मी जो गाने हैं, इनके बिना तो हमारा कोई भी एक मोमेंट, कोई भी एक इमोशन जो है वो अधूरा रह जाए। इसीलिए सिनेमा की बातें करेंगे ओनली ऑन 3 का तड़का। लेकिन उससे पहले चलिए ना सुनते हैं हमारी ये खास पेशकश।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण और बच्चों की देखभाल के बारे में। महिलाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार पर सरकार की निरंतर पहल के परिणाम स्वरूप उनके रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है, हम सब जानते हैं। और अधिक से अधिक महिलाएं अब अपने घर पर बधी हुई आबद्ध नहीं रहती, वो बाहर काम करने के लिए वो निकल रही हैं। और पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों में भी, यानी न्यूक्लियर फैमिलीज में भी तेजी से वृद्धि देखी गई है। और इस प्रकार ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चे जिन्हें पहले काम पर रहने के दौरान संयुक्त परिवारों की सहायता मिला करती थी, उन्हें अब दिन में देखभाल यानी डे केयर की सेवाओं की आवश्यकता है, जो बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सुरक्षा प्रदान करती है। और उचित डे केयर सेवाओं की जो कमी है वो हमने अक्सर महसूस की है। और ऐसा होता है कि जब अपने बच्चों का ध्यान ठीक से रखा जा रहा है या नहीं, इस मामले में आप आश्वस्त अगर ना हो पाएं तो अपने आप को बाहर जाकर काम करने से अक्सर महिलाएं रोकती हैं, वो बाहर नहीं निकलती। लेकिन कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की जो उचित देखभाल है और सुरक्षा देने में होने वाली इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए पालना योजना के माध्यम से डे केयर क्रेश सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्रेश सेवाएं बच्चों की देखभाल जिम्मेदारियों को औपचारिक बनाती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेश योजना को 2022 में पुनर्गठित किया गया और इसका नाम बदलकर रखा गया मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य। और इसके अंतर्गत पालना योजना इसका नया नाम रखा गया। और पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की भागीदारी को सुनिश्चित करती है ताकि दिन प्रतिदिन की बेहतर निगरानी और योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। पालना योजना का उद्देश्य 6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में बेहतरीन क्रेश सुविधा, पोषण सहायता,

0: और बच्चों के स्वास्थ्य और उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी संज्ञानात्मक विकास है, और साथ ही टीकाकरण की भी व्यवस्था ये प्रदान करता है। और पालना के तहत क्रेश सुविधाएं सभी माताओं को प्रदान की जाती हैं, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमने परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बात की मिशन शक्ति के तहत पालना योजना के बारे में।
1: रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: तो भैया, अभी ये जो दौर चल रहा है फिल्मों में, कुछ ऐसे अभिनेता हैं जो कह सकते हैं कि अपनी सेकेंड इनिंग्स खेल रहे हैं, और क्या बेहतरीन खेल रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं आज ऐसे दो कलाकारों की, दो एक्टर्स की बात ज़रूर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगी जिन्होंने हमें अपने बेहतरीन जो रोल्स उन्होंने निभाए, जो जिस तरह का उनका सिलेक्शन रहा किरदारों का, उससे हमें एकदम चौंका दिया, अचंभित कर दिया। नाम है उनका अक्षय खन्ना। और अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म महाकाली का ट्रेलर भी अब रिलीज हो गया है, जिसमें वो असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, और उनके काम की बेहद तारीफ हो रही है। अरे, हर तरीके से, मतलब किस किस रूप में और हम उनको देखेंगे, मतलब ऑडियंस के तौर पर हमको इतना अधिक उन्होंने लुभा दिया। मुझे तो लगता है कि उनके करियर का ये सबसे बेहतरीन फेज चल रहा है। धुरंधर पार्ट 1 के बाद सबको इंतजार था कि अब कौन से नए रूप में

करियर का ये सबसे बेहतरीन फेज चल रहा है। दुरंधर पार्ट वन के बाद सबको इंतजार था कि अब कौन से नए रूप में हम उन्हें देख पाएंगे। तो इक्का जो है उसमें भी बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक कैरेक्टर उन्होंने निभाया है। हालांकि सनी देओल ने ज़्यादा कहते ना कि वाह वाह इस फिल्म में बटोरी है, लेकिन फिर भी अक्षय खन्ना भी वहाँ दिखे, रहमान डकैत जितना नहीं दिखे लेकिन दिखे, और अब महाकाली ने लगता है कि उस कसर को पूरा कर दिया है। उनका जो भौकाल है, जो दम है, वो दिखने को फिर से मिल रहा है। और इस ट्रेलर में वो दिख रहे हैं शुक्राचार्य, एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मिथोलॉजिकल किरदार है शुक्राचार्य का, जिनसे लोग डरते हैं। असुरों के गुरु थे वो, हम जानते हैं। और यहाँ इस फिल्म में जो दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया है, वो है कि असुरों के खिलाफ जो अधर्म हुआ था उसको इस फिल्म में दिखाया गया है, और किस तरह से शुक्राचार्य ने उनके हक के लिए देवताओं से लड़ाई की थी। कहानी का जो फोकस है वो इसी पर है, इसी बात पर है। तो फिर इंतज़ार हमारा जो है

हिंदी फिल्मों में ऐसा होता है, मैं तो कहूंगी दूसरी जो भाषाओं की फिल्में बनती उनमें भी ऐसा होता ही है कि बॉलीवुड में जब कोई एक्टर एक तरह का रोल निभाते एकदम सुपरहिट हो जाता है, तब कुछ समय के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए वैसे ही रोल्स में वो ज़्यादा दिखता है। अब माजरा ये है कि वैसी ही जो फिल्में हैं या वैसे ही जो किरदार हैं वो उनको ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा है बॉबी देओल के साथ। मैंने कहा ना कि दो ऐसे एक्टर्स हैं जो एकदम अपने गजब के फॉर्म में हैं, और ये शायद एक सेकेंड फेज है, ये उनकी ये दूसरी पारी हम कह सकते हैं, जहाँ पर क्या ही कहें, धुआंधार आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बॉबी देओल ने एक जबरदस्त कमबैक तो किया ही है, लेकिन अब जो रोल वो कर रहे हैं वो सारे के सारे एकदम डार्क रोल्स हैं, विलेनस किरदार हैं। और उनकी पिछली जो रिलीज्ड फिल्म है जननायगन, उसमें भी उनका जो रोल है वो विलेन वाला ही रोल है। तो बॉलीवुड की हम बात करें, हिंदी फिल्मों की या साउथ की फिल्मों की बात करें, हर तरफ उनको ऐसे ही किरदार मिल रहे हैं। अल्फा में भी वो विलेन ही थे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के बाद विलेन वाले रोल, मतलब आश्रम एनिमल से लेकर अब तक इसी तरह के किरदार निभाते निभाते जो हैं अब वो थक गए हैं और उनको डर लग रहा है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में ये कहा कि उनको डर लग रहा है कि कहीं वो टाइपकास्ट ना हो जाएं, और चाहते हैं कि उनको अलग तरीके की किरदार भी ऑफर किए जाए। कह रहे हैं कि मैं इस छवि से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मतलब ये हो रहा है कि ये एक कलर आ जाता है ना, आप हिट हो गए विलेन बन के तो आप बस विलेन ही बनिए। तो एक्चुअली वो चाह रहे हैं कुछ अलग किस्म के रोल करना, जिस तरह बंदर जो फिल्म आई थी उसमें उनका अलग काम था, लेकिन मिलने चाहिए ना ऐसी फिल्में। तो वो सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक बॉबी देओल को, कुछ अलग करने का मौका भी आप दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़। फिलहाल थोड़ा सा नॉस्टैल होने का मेरा मन कर रहा है, बॉबी देओल की बात हुई तो एक गुप्त फिल्म का गीत आपको सुनवाऊँ, चलिए सुनते हैं।

सुन रहे हैं आप तीन का तड़का चैनिका के साथ। और फिल्मी जो लोग हैं, हमें लगता है कि असल जिंदगी में भी वो वैसे ही होंगे, फिल्मी होंगे, लेकिन एक बड़ा ही ह्यूमेन सा, बड़ा एक मानवीय एक पक्ष होता है हर इंसान में। वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी उसकी कायनात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उसकी औकात क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं एक वो इंसान मौजूद होता है जिसके अंदर वो सारे मानवीय गुण मौजूद होते हैं। और इसी तरह की एक घटना हुई रितेश देशमुख के साथ, और वो कहीं एक इवेंट में गए और वहाँ से जब बाहर आ रहे थे तो पैपराजी उनकी तस्वीरें ले रहे थे, और उसी वक्त हुआ है कि कुछ छोटे बच्चे उनके पास पहुँचे और उनसे कुछ मांगने लगे कि उनको कुछ दिया जाए। तो जेब में कैश मौजूद नहीं था रितेश देशमुख के, और उनकी ये हालत देखकर वहाँ मौजूद एक पैपराजी फोटोग्राफर ने तुरंत रितेश की तरफ से उन बच्चों को कुछ पैसे दिए। और रितेश देशमुख इस नेक काम के लिए कहते ना कि अभिभूत हो जाना, वैसे उनकी भावनाएं हुई और उन्होंने उस फोटोग्राफर को थैंक यू कहा। लेकिन यहीं पर ये बात ख़त्म नहीं हुई। अब अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने वो फोटोग्राफ जो लेने वाले थे, फोटोग्राफर थे, उनकी तस्वीर साझा की है और लोगों से उनका नंबर ढूंढने में मदद मांगी है। वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये जो उधार है, ये उधार वो चुकाना चाहते हैं। तो होती है ना ऐसी इंसानी जो चीज़ें हैं, आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं, इंसान जिंदा है, ये जो बातें हैं ये हमें बताती हैं।

हाउसफुल 5 के इस गीत के साथ 3 का तड़का आज हम यहीं समेटेंगे और अब प्रस्तुत है विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित ये विशेष कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
1: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
1: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
2: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
2: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
2: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं की, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए
1: जी। और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800-44-0559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
2: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
2: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
3: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
4: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
3: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
4: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
3: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
4: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
3: कैसे बना हिमालय।
4: आज रिद्धि,
3: नव्या
4: और रिदित
3: सब बहुत खुश है
4: क्योंकि उनका परिवार
3: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
5: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
6: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
5: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
6: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
5: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
6: बहुत मजा आएगा।
4: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
3: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
4: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
3: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
4: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
3: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
5: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
4: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
5: क्या 20 करोड़ साल?
4: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
5: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
4: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
6: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
5: रुको रुको मैं बताती हूँ।
4: तुम बताओ।
5: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
4: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
5: टैथिस महासागर।
4: वाह,
5: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
4: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
5: अलग होकर खिसकने लगे?
4: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
5: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
4: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
6: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
5: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
4: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
6: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
5: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
4: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
5: जी।
4: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
5: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
4: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
5: अच्छा?
4: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
6: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
4: हाँ बेटा क्यों नहीं।
6: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
4: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
5: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
4: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
6: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
4: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
6: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते।

0: सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या

निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर

0: आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
1: ये किस तरह की मूर्ति है?
0: ये किस तरह की मूर्ति है?
2: ऐसी मूर्ति तो मैंने
3: वाओ वंडरफुल।
4: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
0: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
4: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
0: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
4: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
5: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
6: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
0: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
4: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
0: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
8: ग्रेट, मार्वेलस। हाँ,
6: अवसर ऐसा ही होता है।
8: वंडरफुल।
9: हाँ, हम सहमत हैं।
0: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
4: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
4: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सुरों की महफिल।

अर्ज किया है, माना कि इस जमीन को ना गुलजार कर सके, माना कि इस जमीन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। क्या खूब लिखा है लिखने वाले ने, शायद अपने बारे में ही लिखा है। प्रख्यात प्रगतिशील भारतीय शायर और फिल्मी गीतकार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक असमानता के विरुद्ध नज्मों और गीतों के लिए प्रसिद्ध हम सब के बेहद बेहद प्रिय साहिर लुधियानवी की आज बात होगी सुरों की महफिल में। छाया लोग सुन रहे हैं आप, एफएम रेनबो कोलकाता पर ट्यून इन किया है चयनिका के साथ, और छाया लोग का पहला घंटा आज हम करेंगे नाम साहिर लुधियानवी के। शाम 7:07 और 50 सेकंड्स फिलहाल एकदम सही समय स्टूडियो की घड़ी में, और चलिए दूसरे गीत की तरफ रुख किया जाए। बातें कम करेंगे और गीत आज ज्यादा सुनेंगे इस पहले घंटे में। और पहला गाना प्यासा फिल्म से हमने सुना, क्या खूबसूरत सा एक ग्रेस इस कविता में हमने सुना, महसूस किया एक पोएट्रिक ग्रेस, और साथ में भोला भाला सा प्यार वाला इमोशन, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और अब जो दूसरा गीत मैं सुनवाऊंगी वो है फिल्म चित्रलेखा से, ऐसी फिल्म जो अपने गीतों के लिए बेहद मशहूर हुई, रोशन का संगीत था और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत चित्रलेखा से।

सुरों की महफिल। सुन रहे हैं आप चैनिका के साथ छायालोक सुरों की महफिल, और साहिर लुधियानी द्वारा लिखे गए आज ये खूबसूरत गीत आपकी नजर में कर रही हूँ छायालोक के पहले घंटे में। लुधियाना के एक जागीरदार घराने में 8 मार्च 1921 को पैदा हुए थे साहिर लुधियानवी, और उनका नाम जन्म के वक्त रखा गया था अब्दुल हई, और उनकी परवरिश उनके ननिहाल में हुई। और जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनका दाखिला मालवा खालसा स्कूल में करवा दिया गया, जहां से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उस जमाने में लुधियाना उर्दू का गतिशील और सरगर्म केंद्र था, और यहीं से उन्हें शायरी का शौक पैदा हुआ, और मैट्रिक में पहुंचते पहुंचते वो शेर कहने लगे। लेकिन फिल्मी दुनिया में किस तरह से उनकी शुरुआत हुई इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन एक गीत अभी आपको मैं सुनवाऊं वक्त फिल्म से। ये कालजयी गीत है जिसको हमने न जाने कितनी बार सुना है, जो घर में जब शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं वहां पर ये गाना तो मैंडेटरी है, और एक बेहद कल्ट सुपरहिट फिल्म में भी ये गाना इस्तेमाल हुआ जिसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत अगर आपने गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, हम सुनते हैं मन्नदी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना। फिल्म का नाम वक्त और संगीतकार रवि।

सुन रहे हैं आप सुरों की महफिल, चैनिका है आपके साथ और आज हम सुनवा रहे हैं आपको बेहद खूबसूरत हिंदी फिल्मी नगमे जो साहिर लुधियानवी की कलम से निकले थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आसान नहीं था उनके लिए फिल्मी गाने लिखना। बतौर गीतकार फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कोशिश उनको करनी पड़ी और इसकी एक वजह ये भी थी कि वो कमर्शियल गीत लिखने को तैयार नहीं होते थे। फिर एक दोस्त के माध्यम से उनकी मुलाकात सचिन देव बर्मन के साथ हुई, जिनको अपने मिजाज के किसी गीतकार की जरूरत थी और बर्मन ने उनको अपनी एक धुन सुनाई और साहिर ने तुरंत उस पर लिख डाला ठंडी हवाएं और बस ये क्या था, मामला जो है एकदम खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ गया। एस डी बर्मन को बहुत बहुत बहुत पसंद आए साहिर लुधियानवी। उसके बाद तो बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे, उनको सरों से सजाया, एक साथ मिलकर दोनों ने बहुत उम्दा काम किया। इस जोड़ी ने कई यादगार फिल्मी गाने हमें दिए। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मैं कोशिश कर रही हूं कि अलग अलग संगीतकारों की जो कॉम्पोजिशंस हैं उनको हम शामिल करें आज के इस कार्यक्रम में, जहां साहिर लुधियानवी ने अल्फाज दिए हैं। तो बेशुमार हिट गाने हैं, केवल सचिन देव बर्मन के साथ ही नहीं बल्कि उन्होंने काम किया है रवि के साथ, खयाम के साथ, रोशन के साथ। आज के इस कार्यक्रम में अब तक हमने फिलहाल सचिन देव बर्मन, रोशन और रवि के संगीत में सुना कि आपने किस तरह के ये नायाब गीत लिखे हैं। और आपको लगे हाथ बताना चाहूंगी कि 1963 की फिल्म ताजमहल और 1976 की कभी कभी में बेहतरीन गीतकार का फिल्मफेयर अवार्ड जीता था साहिर लुधियानवी ने। और जब कभी

कवि का जिक्र हुआ है तो आइकॉनिक एक फिल्म, मल्टी स्टारर एक फिल्म, जहां पर न केवल हम याद करते हैं किरदारों को, फिल्म की कहानी को, बल्कि याद करते हैं, याद रखते हैं फिल्म के गीतों को भी। और इस फिल्म में लिखते हैं साहिर लुधियानवी, मैं पल दो पल का शायर हूँ। लेकिन पल दो पल के शायर तो वो है नहीं, और इसका सबूत हमें बार बार मिलता रहा है। अभी भी फिलहाल पिछले एक दो साल में, कुछ एक महीनों में भी हमें ये सबूत मिला। कैसे मिला बताऊंगी आपको, लेकिन पहले सुनते हैं यही वाला गाना, पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। लेकिन जो असल जिंदगी है, वहां पर कभी भी कलाकार पल दो पल का नहीं होता।

न तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक के खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे नाम मुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारागर की तलाश है। न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है। तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क

जिस्म इश्क और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। साहिल लुधियानवी कॉन्टेम्प्ररी हैं, पल दो पल के शायर नहीं है। ये हमने जाना जब उनके इस गीत का इस्तेमाल फिल्म धुरंधर में हुआ, और जो गीत बना नए तरीके से वो चार्ट बस्टर हुआ, और उस गीत को सुपरहिट करने में इन अल्फाजों का जो रोल है, जो भूमिका इस गीत ने निभाई है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुना जाए। धनवान फिल्म से हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत में साहिर लुधियानवी ने क्या लिखा था, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज है आप सबके लिए केवल एफएम रेनबो कोलकाता पर।

सुरों की महफिल। राजेश रोशन का संगीत और फिल्म का नाम काला पत्थर, साहिल लुधियानवी के गीत मैं आज आपको सुनवा रही हूं। और सुरों की महफिल में चैने का है रात 8 बजे तक, और 15 मिनट शेष है हमारे बीच 7:45 और 42 सेकंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में, एकदम सही समय। तो साहिर की अगर बात करें तो जितने प्रयोग शायरी में उन्होंने किए हैं, दूसरों ने उनसे कम ही किए होंगे। सियासी शायरी की है आपने, रूमानी शायरी की है, जज्बाती उलझनों को गहराई से व्यक्त करने वाली शायरी की है, और इनकलाबी शायरी की है जिसमें किसान और मजदूर वर्ग की बगावत का ऐलान है। अपने निजी अनुभव और संवेदनाओं ने शायरी में दूसरे शायरों के मुकाबले ज्यादा सच्चाई और संवेदनशीलता पैदा की। अगर साहिर को हम समाप्त करना चाहें तो ये दो पंक्तियां मुझे लगता है एकदम सही तरीके से उनका जो लेखन का जो एक तरीका रहा, जिस तरह से उनकी लेखनी रही, शायरी रही, उनके गीतों की, नज्मों की, तो कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव एक गीतकार, एक शायर रहे साहिर। और आज के इस कार्यक्रम में मैं सच में कितना ही आपको सुनवा पाऊंगी। ये जो खजाना है, ये एक अनमोल खजाना है, एक से बढ़कर एक गीत हैं जो निकले थे उनकी कलम से।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक बरो 7 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और आज मुझे भी यही उपाय अपनाना होगा। साहिर लुधियानवी के सारे गीत कहाँ फिट हो पाएंगे एक घंटे में। तो सुरों की महफिल से चैनिका लेती है विदा, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोग न जाएं क्योंकि 8:02 पर पूनम आएगी लेकर छायालोक का दूसरा भाग। आप लोग सुनते रहें, साथ रहें FM रेनबो कोलकाता। और चलते चलते जो आपकी और मेरे दिल की एक साथ आवाज अभी फिलहाल निकल रही है, वही इस गीत में बयां कर रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय, आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक, और फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना। करण जौहर द्वारा निर्देशित एक बेहद चर्चित, भावनात्मक और अपने समय से काफी आगे की फिल्म है, ऐसा आप कह सकते हैं। और इसका ये लंबा और दिल छू लेने वाला ये जो नाम है ना फिल्म का, वो जीवन के, बोल सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं और जुदाई के दर्द को बयां करता है। ये इसका ये जो नाम है ना, कभी अलविदा ना कहना। जी हाँ, तो आज मेरा मूड ऐसा ही है कि मैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में ही आप सबके साथ कुछ बातें साझा करूं, जिनके ये जो नाम है ना, जैसे कि इस फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना, ऐसी फिल्में जिनका नाम बहुत कुछ कह देता है, यानी उनका नाम काफ़ी बड़ा है और अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। तो ये इस फिल्म का गीत तो आपने सुन ही लिया, और इस फिल्म में काम किसने किया है? शाहरुख खान ने, रानी मुखर्जी ने, अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ किरण खेर ने भी। फिलहाल 8:19 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ अगले 9 बजे तक यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

सोनू निगम और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में फिल्म कभी खुशी कभी गम से आपने ये खूबसूरत सा नगमा सुना। मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर, निर्देशक करण जौहर। एक प्रतिष्ठित पारिवारिक ड्रामा फिल्म जो पारिवारिक मूल्यों, अहंकार, प्यार और रिश्तों की अनबन पर आधारित है। एक अमीर घराने का मुखिया यशवर्धन रायचूर अपने गोद लिए हुए बेटे राहुल को बेदखल कर देता है क्योंकि वो अपनी पसंद की साधारण लड़की अंजलि से शादी कर लेता है। बाद में छोटा भाई राहुल उसे वापस परिवार में मिलाने की कोशिश करता है और इसका ये जो लंबा चौड़ा नाम है ना, ये जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख को खूबसूरती से बयां करता है। फिलहाल 8:27 और अगला नगमा एकदम तैयार आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथियों ही बने रहिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

अभी अभी आपने ये जो गीत सुना छुप गया बदली में जाके, फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में ये गीत आपने सुना। अनिल कपूर और काजोल स्टारर ये फिल्म एक पारिवारिक और इमोशनल ड्रामा थी और इसका ये फिल्मी और रोमांटिक नाम दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहा था। ऐसे ही मेरी झोली में और भी खूबसूरत नगमे हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, तो सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107 आगे आप सब जानते हैं।

गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक, और फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक। जी हां, आमिर खान और जूही चावला की इस सदाबहार प्रेम कहानी ने सिनेमा इतिहास रच दिया, और इसका ये जो बड़ा सा नाम है ना, वो अमर प्रेम का प्रतीक बन गया कयामत से कयामत तक। फिलहाल 8:54 और एक बेहद खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:56 और सच में कुछ कहने की गुंजाइश अब बची ही कहाँ है। तो बस आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ तो पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय बाय।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट।